0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, आरजे अदनान आपके साथ है। सब एकदम मस्त बढ़िया इन द शो। आशा करता हूँ कि आज आपका सब कुछ कुशल मंगल होगा और आज का ये नया सवेरा आपके लिए कुछ अच्छा लेकर ही आएगा ना। कभी कभी हमें लगता है कि यार इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में सुकून कहाँ है। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत गहरी बात कही है कि सच्चे मन से किया गया छोटा काम भी बड़े बड़े भाषणों से भी कई ज्यादा असरदार होता है। सोचिए जरा, अगर हम हर कदम चाहे छोटा हो या बड़ा हो पूरे सच्चे मन से करे, उसका काम करे, तो सिर्फ हमारा दिन ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। तो चलिए फिर आज का दिन हम इसी विचार के साथ शुरू करते हैं कि सच्चे मन से काम करना, ये कहा गया है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, यानी कि हमारे बापू जी ने। तो चलिए फिर आज का दिन हम इसी विचार के साथ शुरू करते हैं, सच्चाई और सच्चे मन से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब जब मन साफ हो तब तब रास्ते अपने आप आसान हो ही जाते हैं। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ गुड मॉर्निंग करने वाला ये शो जिसका नाम है
1: Only on MGM 90.8 FM.

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

तर वेळ झाली आहे एक्झॅक्टली 7:54 मिनिटांची. या वेळेत ना तर आपण एक गेम खेळत असतो ज्याचं नाव आहे और इसमें मैं आपको एक छोटी सी पहेली पूछता हूँ और आप मुझे उसका एकदम सही जवाब बताते हो. तो आज की पहेली कुछ ऐसी है कि ये धनुष है जो सबको भाता मगर लड़ने के काम बिल्कुल भी नहीं आता. बताइए ये क्या है. फिर से एक बार दोहराता हूँ कि ये धनुष है जो सबको भाता मगर लड़ने के काम ना आता. बताइए ये क्या है. और इसका जवाब आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर. और एक हिंट देता हूँ कि इस मौसम में ना तो अक्सर ही दिखाई देता है. अब इतना बड़ा मैंने हिंट दे दिया तो जल्द से जल्द जवाब दीजिए व्हाट्सएप पर या तो फिर आप इंस्टाग्राम पर जवाब दे सकते हो RG अदनान इस इंस्टा पेज पर. सो जल्दी करें, जो सबसे पहले जवाब देगा उसे ही गिफ्ट मिलने वाला है. सो देर मत कीजिएगा, फोन उठाइए, जवाब दीजिए, इंटरेक्शन कीजिए और बाकी तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए.

सबसे बड़ा असली इम्तिहान क्या है पता है? ऑफिस की डेडलाइन और घर की जिम्मेदारियों में बैलेंस बनाकर रखना। वर्क लाइफ बैलेंस सुनने में आसान लगता है पर असल में ये कला भी है। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो। और लाइफ मंत्रा में अभी हम इसी पर बात करेंगे। सोचिए, अगर काम ही काम करेंगे तो थकान आपको खा जाएगी, और अगर सिर्फ आराम ही करोगे तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो सही रास्ता है बीच का। कभी कभी ऑफिस से जल्दी निकल जाइए, बच्चों के साथ खेलिए, परिवार के साथ डिनर पर बैठिए, दोस्तों से मिलिए या बस अकेले टहल लीजिए। ये छोटे छोटे पल आपको फिर से रिचार्ज कर देंगे। याद रखिएगा, काम आपकी रोजी है लेकिन जिंदगी आपकी मोहब्बत है, और मोहब्बत को वक्त देना असली वर्क लाइफ बैलेंस है। तो दोस्तों, लाइफ मंत्रा में एक बात याद रखिए कि काम भी कीजिए और जिंदगी भी जिए, यही है आज का लाइफ मंत्रा। तो इसको फॉलो कीजिए और मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए।

0: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrists, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष hospital, अदालत road signal, विवेकानंद college road, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल संत तुकाराम नाट्यगृह रोड फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस रेडको एन फाइव छत्रपति संभाजी नगर.
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. सो एमजीएम यूनिवर्सिटीज जेएनईसी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTEC, MTEC, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA. हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन एंड research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

यार, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई, जिसको गाया है किशोर कुमार जी ने। तो लगता है अभिषेक भाई की भी किसी अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई है, इसलिए इसे गाने सुनने का भी मूड कर रहा है। चलिए फिर अभिषेक की फरमाइश पूरी करते हैं और उनका ये पसंदीदा गाना प्ले करते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो मुझे व्हाट्सएप करें 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। जल्दी करें, देर मत करें और एंजॉय करें आने वाला सुपर से डुपर हिट गाना। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM साथ है।

0: बता दूं?
1: वो यहीं पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

की अरमा आंसू में बह जाते भाई, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे उससे वही होगा। तो देखो पहले बता दो, यहाँ पर मैं प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करने वाला हूँ। बात यह है कि दिल की अरमा हमारे भी आंसू में बह गए भाई, जब मैं भी ना कमल तालाब देखने गया। अपने शहर में ना तर कमल तालाब सुरू झालेला आहे, आणि जेव्हा त्याचं ओपनिंग झालं होतं तर खूप थाटा माटात ओपनिंग केलं होतं, आणि वाटलं होतं की आता कमल का फूल दिखाई देगा, लेकिन वो फूल ने फूली कर दिया हमें। तकरीबन पूरे 5 एकड़ का एक कमल तालाब बनाया हुआ है, और इसमें कमल के फूल कितने है, बस 10 कमल के फूल है। मतलब 5 एकड़ के कमल तक तालाब में बस 10 कमल के फूल, वाह भाई वाह। इसे कहते हैं गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है। मतलब भले हम 20 रुपए का टिकट निकाल रहे हो, लेकिन इंसान एक एक्सपेक्टेशन से जाता है कि भाई नाम कमल तालाब है, हमें कमल के फूल दिखाई देंगे, बहुत ही बढ़िया फोटो वोटो हम खींचेंगे और तालाब के किनारे बैठकर थोड़ा सुकून से वक्त गुजारेंगे। लेकिन दिल के अरमा आंसू में बह जाते और सोचते भाई नाम तो कमल है, लेकिन कमल का फूल कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और ऊपर से फिर प्रशासन कहता है कि यार हम तो बनाते हैं कुछ प्लेसेस लोगों को जाने के लिए, लेकिन टूरिस्ट वहां पर आते ही नहीं। आएगी क्यों भाई, 10 कमल के फूल देखने के लिए आएगी इतना बड़ा तालाब बनाने के बाद? तो थोड़ा आपको भी काम करना पड़ेगा, फूल वहां पर बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को फूल कम बनाना पड़ेगा आपको, समझे? खैर बाकी तो चलता है, चलने दो, बल्कि बस चलता ही आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रशासन को नहीं पता होगा, ये पता तो होगा, लेकिन वही है ना, गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है। खैर कहीं आपको 11वां फूल दिखाई दे ना कमल का, तो बताइएगा जरूर मुझे, ताकि मैं भी देखूं कि यार ये 10 फूल तो है, 11वां कहां से आ गया। बट कमल तालाब का नाम कमल तालाब है, तर त्याप्रमाणे त्याचं नावाचं तरी अस्तित्व ठेवायला पाहिजे। काही बोले आता, जाऊन द्या। Only on MGM 90.8 FM.

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू.
3: ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
5: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
6: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
7: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
6: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
7: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो MGM यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम, नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो MGM University's JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM। कांतारा का ये गाना मेल सिंगर ने गाया है या फीमेल सिंगर ने?
1: कर्म की पोखरी जन्म का द्वार है।
0: सुनकर लगता है कि ये किसी फीमेल सिंगर की वॉइस होगी, लेकिन नहीं, ये एक मेल सिंगर की वेंकटेश डीसी।
1: अरुमद कल्लनु यडविदा मनु जना बेरलिन गायव।
0: उनकी नेचुरल वॉइस हाई पीच है और उस पीच में गाना वो कंफर्टेबल समझते हैं, लेकिन इस गाने में थोड़ा चेंज है और साथ ही साथ उनकी टोन बहुत सॉफ्ट है और इस गाने में उन्होंने यूज की है हेड वॉइस और मिक्स वॉइस, इसी वजह से उनकी आवाज पतली हल्की और फीमेल जैसी साउंड करती है। तो ये कन्फ्यूजन सिंगर के वजह से नहीं बल्कि सिंगर की यूनिक वोकल रेंज, सिंगिंग टेक्निक और म्यूजिक प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन है।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: गुड मॉर्निंग आदाब आरजी अदनान आपके साथ इन द शो एंड शो के स्टार्टिंग में हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है और इसमें मैंने आज आपको ना तो एक पहेली पूछा था। पहेली कुछ ऐसी थी कि ये धनुष है जो सबको भाता मगर लड़ने के काम ना आता, बताइए ये क्या है। और इसका जवाब है इंद्रधनुष। जी हाँ, इंद्रधनुष। ये धनुष सबको भाता है लेकिन लड़ने के काम थोड़ी आता है, और बरसात के मौसम में तो अक्सर हमें दिखाई देता है। और एकदम परफेक्ट और सबसे टाइम पर जवाब दिया है अंजलि खोत ने। सो कांग्रेचुलेशन अंजलि खोत मैम, आज आप विनर बन चुके हो, आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। सो अंजलि खोत मैम आज की विनर है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और दोस्तों अगर आपको भी ऐसे विनर बनना है तो मेरे पहेलियों के जवाब देते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

सो रुकावट के लिए खेद है जनाब, बीच में थोड़ा कुछ तो टेक्निकल इशू आ गया था और इस वजह से मेरी आवाज़ ही गायब हो गई थी। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। और कभी कभार ऐसा होता है ना, हम बटन कुछ और दबाना चाहते हैं और कुछ और दब जाता है, तो ऐसा ही मेरे साथ हो गया। इसलिए कह रहा हूँ अभी आप ऑफिस पहुँचे हो तो ज़रा काम पर फोकस कीजिएगा। क्या है ना, 2-3 दिन की लॉन्ग वीकेंड के बाद मेरे जैसा दिमाग आपका भी हो सकता है। क्या है, CPU का बटन दबाने के चक्कर में आप कुछ और ही दबाओगे और सब कुछ तबाह हो जाएगा। सो चलो मैं तो चला अब अपनी गली, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल गणपति उत्सव शुरू है तो मोदक वगैरह खाइए, और मैंने भी नहीं खाया अब तक, तो मुझे भी आप भेज सकते हो भाई, या तो इनवाइट कर सकते हो मोदक खाने के लिए। बाकी मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। साथियों, ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले टाइड ग्रांट जल एवं स्वच्छता के कार्यों के लिए निर्धारित है। इस राशि का उपयोग गांव की पेयजल योजनाओं की देखभाल, मरम्मति, जल गुणवत्ता जांच, जल संरक्षण और लोक जल उत्सव, जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे गतिविधियों में किया जा सकता है। इससे पेयजल योजनाएं लंबे समय तक सुचारू रूप से चलती रहेंगी और ग्राम पंचायत के सहयोग से लोगों को बेहतर पेयजल सेवा मिलती रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइप जल आपूर्ति योजना से मिलने वाला साफ और सुरक्षित पीने का पानी केवल सुविधा नहीं है, बल्कि यह बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद है। इससे डायरिया, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों में कमी आती है, बच्चों और गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य सुधरता है और परिवारों का इलाज पर होने वाला खर्च भी घटता है। स्वस्थ परिवार मतलब कामकाज में कमी नहीं, आमदनी में नुकसान नहीं। इसलिए पाइप नल योजना के माध्यम से मिलने वाला साफ पानी गांव की तरक्की की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, चूंकि मानसून अपने चरम पर है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वर्षा जल का एक एक बूंद हमें बचाना चाहिए, मेरा सबसे आग्रह है कि पानी का समझदारी से उपयोग करें और बर्बादी से बचें। साथ ही जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के रिचार्ज की तैयारी करें ताकि हमारे पेयजल स्रोत साल भर टिकाऊ बने रहें। आइए हम सब मिलकर सरकार और समुदाय की साझा जिम्मेदारी निभाएं, अपनी पाइप पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखें, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर घर तक सुरक्षित और नियमित पानी पहुंचता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: अरे सुजल, पुढच्या भागाबद्दलही थोडंसं सांग ना।
2: अरे हो, मी तर विसरलोच होतो। मित्रांनो, पुढच्या भागात आपण जाणून घेणार आहोत की स्वच्छ भारत मिशन देशातल्या प्रत्येक गावाला स्वच्छ आणि ODF प्लस गाव बनवण्यासाठी काय प्रयत्न करत आहे आणि त्यासाठी पुढची रणनीती काय असणार आहे। तर मित्रांनो, आमच्या सोबत असंच जोडत रहा स्वच्छ सुजल गाव की कहाणी रेडिओ की जुबानी।
1: पुढच्या भागापर्यंत आता सगळ्यांना आमचा नमस्कार।
2: आणि आजचा कार्यक्रम कसा वाटला नक्की आम्हाला कळवा 9359320080 या व्हॉट्सअप नंबरवर।

0: रवे माझे तुझ्या मनवर सरीवर सर सरीवर सर सरीवर सर सर सर सर सरीवर सर सरीवर सर।
1: अब आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए MG94.FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, CIDCO N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 906761-2000.
4: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर,
5: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8.

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गाय।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: दिल के अरमां आंसू में बह जाते भाई, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे उससे वही होगा। तो देखो पहले बता दो, यहाँ पर मैं प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करने वाला हूँ। बात यह है कि दिल की आर में हमारे भी आंसू में बह गए भाई, जब मैं भी ना कमल तालाब देखने गया। अपने शहर में ना तर कमल तालाब सुरू झालेला आहे, आणि जेव्हा त्याचं ओपनिंग झालं होतं तर खूप थाटा माटात ओपनिंग केलं होतं, आणि वाटलं होतं की आता कमल का फूल दिखाई देगा, लेकिन वो फूल ने फूली कर दिया हमें। तकरीबन पूरे 5 एकर का एक कमल तालाब बनाया हुआ है, और इसमें कमल के फूल कितने है? बस 10 कमल के फूल है। मतलब 5 एकर के कमल तक तालाब में बस 10 कमल के फूल। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है। मतलब भले हम 20 रुपए का टिकट निकाल रहे हो, लेकिन इंसान एक एक्सपेक्टेशन से जाता है कि भाई नाम कमल तालाब है, हमें कमल के फूल दिखाई देंगे, बहुत ही बढ़िया फोटो वोटो हम खींचेंगे और तालाब के किनारे बैठकर थोड़ा सुकून से वक्त गुजारेंगे। लेकिन दिल के अरमां आंसू में बह जाते और सोचते भाई नाम तो कमल है, लेकिन कमल का फूल कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और ऊपर से फिर प्रशासन कहता है कि यार हम तो बनाते हैं कुछ प्लेसेस लोगों को जाने के लिए, लेकिन टूरिस्ट वहां पर आते ही नहीं। आएगी क्यों भाई, 10 कमल के फूल देखने के लिए आएगी? इतना बड़ा तालाब बनाने के बाद तो थोड़ा आपको भी काम करना पड़ेगा, फूल वहां पर बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को फूल कम बनाना पड़ेगा आपको, समझे? खैर बाकी तो चलता है, चलने दो, बल्कि बस चलता ही आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रशासन को नहीं पता होगा, ये पता तो होगा, लेकिन वही है ना, गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है। खैर कहीं आपको 11वां फूल दिखाई दे ना कमल का, तो बताइएगा जरूर मुझे, ताकि मैं भी देखूं कि यार ये 10 फूल तो है, 11वां कहां से आ गया। बट कमल तालाब का कमल तलाव है तर त्याप्रमाणे त्याचं नावाचं तरी अस्तित्व ठेवायला पाहिजे। काय बोलले आता, जाऊन द्या।
1: Only on MGM 90.8.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एंड फाइव, छत्रपति संभाजीनगर।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: हर रोज हम फोन उठाते हैं, ऑर्डर डिलीवर ये नोटिफिकेशन आता है और बस दो सेकंड के लिए दरवाजा खोलते हैं, पर उस दरवाजे के बाहर जो खड़ा होता है उसकी भी एक कहानी होती है। एक डिलीवरी बॉय था अमन, सुबह 9 बजे घर से निकलता, रात 11 बजे तक गर्मी हो, बारिश हो या ट्रैफिक, फोन पर बस एक लाइन ब्लिंक करती है, योर ऑर्डर इज अराइविंग सून। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, रोड पर पानी, कपड़े पूरे भीगे हुए, पर ऐप में टाइम चल रहा था। अमन बाइक साइड में रोककर 10 सेकंड के लिए खुद से बोला, बस यार अब ये लास्ट ऑर्डर, फिर घर चला जाऊंगा। पर मिडिल क्लास घरों में लास्ट ऑर्डर कभी लास्ट नहीं होता। उसने पार्सल डिलीवर किया, दरवाजा एक छोटी सी लड़की ने खोला, पिज्जा देखकर वो खुश हो गई और अंदर भाग गई। अमन मुड़ने ही वाला था तब उस लड़की की मम्मी बाहर आई और बोली, भैया आप पूरे भीग गए हो, चाय पियोगे? सच बताओ उस दिन अमन को चाय से ज्यादा ये लाइन पसंद आई। वो 2 मिनट दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, हाथ में चाय, आंखों में थोड़ी थकान और दिल में एक अजीब सा सुकून, क्योंकि कभी कभी लोग पैसे से नहीं इज्जत से थकान उतार देते हैं। तो अगली बार जब कोई डिलीवरी बॉय आपके घर आए, सिर्फ पार्सल मत लीजिए, एक स्माइल भी दीजिए, उसे कम से कम पानी का तो पूछिए, क्योंकि उनके बैग में सिर्फ ऑर्डर नहीं होते, घर की जिम्मेदारियां भी होती है।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: माझे तुझ मन भर सरीवर सर सरीवर सर सरीवर सर सर सर सर सरीवर सर सरीवर सर
1: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
2: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
3: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrist. इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
4: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: तक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।